0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
5: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2. This is the show that gets you up and running. It's called The Big Breakfast.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: अभी तो पार्टी ब्रेकफास्ट वाली शुरू हुई है जस्ट 7:12 एंड आप जानते हैं पहले घंटे में हम लोग क्या करते हैं. ये मेरा नहीं, ये आपका घंटा है. दिस इज योर आर, इट्स योर आर टू शाइन. एंड इन केस देयर इज अ सॉन्ग दैट यू रियली वांट टू लिसन टू इन द मॉर्निंग ऑन योर वे टू वर्क, देन व्हाट्सएप मी 0543091062. दैट्स द नंबर 0543091062. कौन सा एक गाना आपको करता है रोज सुबह तरोताजे? इफ देयर इज म्यूजिक दैट यू रिलाई ऑन टू गेट यू इन द राइट मूड टू फेस दिस ब्रांड न्यू डे एट वर्क, देन लेट मी नो. WhatsApp it to me coming up in just a while. मैं वापस आऊंगा से मस्कारा. क्या मैच था यार, ऐसे मैच वापस नहीं आते. इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, हार्ट ब्रेक फॉर थ्री लायन फैंस हियर इन द UAE. आई नो देर आर सो मेनी ऑफ देम, बट यस, अर्जेंटीना बीट इंग्लैंड. ऑल्दो इंग्लैंड वर लीडिंग टिल व्हाट, आई थिंक द 75th मिनट, 75 मिनट्स तक 1-0 इंग्लैंड वर लीडिंग. एंड देन वॉट अर्जेंटीना हैज डन सेवरल टाइम्स इन दिस वर्ल्ड कप, कम बैक फ्रॉम बिहाइंड, स्कोर 2 goals एंड विन इवन बिफोर एक्स्ट्रा टाइम. सो इट्स गोना बी अर्जेंटीना टेकिंग ऑन स्पेन इन द फाइनल्स.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ओ काका, काका भाणिया वाला विद गोरिये फ्रॉम गली बॉय राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: 7:49 वो टाइम जब पापा हमारे कुर्ता पजामा पहनकर ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे, दैट स्प्रेडशीट न्यूज़पेपर. व्हाट इज योर फेवरेट सेक्शन इन अ न्यूज़पेपर ग्रोइंग अप? माइन वाज दैट पजल सेक्शन. नेवर कुड एक्चुअली सॉल्व एन एंटायर क्रॉसवर्ड, लेकिन ट्राई तो करता था. सुडोकू वाज मोर माय थिंग. सो स्पीकिंग ऑफ विच, इट इज नाउ टाइम फॉर दिस सेगमेंट ऑफ वेक अप विद सेड. सेड सो 5:30 बजे उठ जाता है. It's not wake up, Sid. It's wake up with Sid. I'm going to give you some clues, early morning trivia questions, some clues about a creature. Today, 16th of July, is the day to celebrate a particular creature. It is the World Dash Day. What is this dash? Fill in the blanks. Clues se pehchaniye main kis creature ki baat kar raha hu. First clue is, it is completely legless. Iske paon nahi hote. It is a carnivore found on every continent except Antarctica. एंटार्क्टिका के अलावा हर एक कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है. देर आर 3,000 स्पीशीज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जबड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. इट्स इट कैन गो अप टू 150 डिग्रीज, विच अलाउज इट टू स्वॉलो प्रे लार्जर दैन इट्स ओन हेड, विच इज इनक्रेडिबल. देर इज अ फ्लाइंग वराइटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड हालांकि इसके कान और आईलिड पलके नहीं होती, नहीं पलक तो अलग, आई लैश हो गया, आईलिड और कान नहीं होते, लेकिन फिर भी how do they hear? By detecting vibrations through the ground. हमारी तरह नहीं कि 8th standard में इनकी height रुक जाती है, जिंदगी भर grow करते रहते हैं. And they've got incredible fasting abilities. ये जानवरों की दुनिया के अन्ना हजारे हैं. They can stay for several months without eating after a massive meal. And finally, a phobia of this creature is officially called ophidiophobia. Ophidiophobia is the phobia of what creature? Today is the day to celebrate this particular creature. अगर आपने figure out कर लिया, then send me a WhatsApp 054-309-1062. 054-309-1062. Play for pride, not for prize. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. पहले आज के ट्रिविया क्वेश्चन का जवाब तो दो, फिर मानेंगे बड़ा नाम करेगा.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Akash Aziz with Slow Motion right here on Big 106.2. आज 13 मिनट ऑन दिस 16th ऑफ जुलाई एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यहां पर यूएई में जो हैं दे आर देयर राइट बट इवन दो यू हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल यू डोंट रियलाइज कि वो हैं देन एवरी नाउ एंड देन द अथॉरिटीज हैव टू हाईलाइट दैट फॉर अस
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: फॉर एग्जांपल क्या आपको पता था कि देयर इज एक्चुअली अ 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा दैट यू कैन एक्चुअली गेट विदाउट द नीड ऑफ अ लोकल स्पॉन्सर सो दुबई इमिग्रेशन का ये अपडेट It's an update. It's a re-highlighting of something that's already been there. 5 साल का multiple entry tourist visa मिल सकता है. GDRFA ने इसको highlight किया है. And there's an official service for it. And the tourist can enter the UAE multiple times over 5 years without needing a local sponsor. And हर visit जो है, it can be for up to 90 days. Possible extension भी है. But it's still a tourist visa. It's not a work or residency visa. And application के लिए क्या-क्या चाहिए? Basics, जैसे कि passport valid for 6 months. Photo. Health insurance, return ticket, 6 months of bank statements, and proof of funds around $4,000. That is very important. Proof of funds around $4,000, and basically that's it. You get to enter the UAE. So, agar aapko you know bar bar aana rehta, if you're like a repeat visitor here, you visit very frequently as everybody should, then this is very very useful. Yaar, matlab one of those things again, like I said, ke hai. लेकिन इट टेक्स फॉर द अथॉरिटीज काइंड ऑफ हाईलाइटेड फॉर अस दिलजीत पाजी विद नैना कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड गुड मॉर्निंग बिग

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: गुड मॉर्निंग, 8:17 मिनट ऑन दिस 16th ऑफ जुलाई थर्सडे की सुबह. फॉग अलर्ट्स हैं इन नाइट, स्पेशली रेड एंड येलो फॉग अलर्ट्स हैं, एनसीएम ने कहा. एंड ऑल्सो चांस ऑफ रेनफॉल इन सर्टेन एरियाज ऑफ द यूएई. विंड्स में ऑल कॉज ब्लोइंग डस्ट, सो गॉट बी केयरफुल टुडे. इट्स अ नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस थर्सडे मॉर्निंग. 36 डिग्रीज सेल्सियस आई नाउ, ह्यूमिडिटी एट 60%, विंड्स ब्लोइंग एट 29 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 40, लोज ऑफ 33 डिग्रीज.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 162. Big 16.2. Song of the Hour brought to you by insurance.ae.

0: टॉकिंग अबाउट नैना, अगर आपका खाना हजम ही नहीं होता जब तक कि नैना में से थोड़े से आंसू नहीं निकल जाते, दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर यू।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ना प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक तरफ या सोशल मीडिया के वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, लेकिन अब हर एरा गेरा नथु गेरा इट डज लाइक अ टॉप 10, कम्स अप विद देयर ओन रेटिंग्स। गॉट टू टेक ऑल ऑफ दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ ग्रीन चिली इन योर माउथ, राइट? सो देयर इज एन ऐप, आई मीन देयर इज अ account that I follow on Instagram. It's quite nice. Achha food account hai. I like, kind of looking at food stories and all of that. So, they came up the 10 countries with the spiciest food. Yeah? Agar main aapse poochhun ki aapke hisab se kaun se khano mein, kaun se cuisine mein sabse zyada spice hogi, rated top 10. And isme number 1 is Nigeria. Now, I don't know too much about Nigerian food. Toh maine kaha chalo theek hai. India is number 3. Guess which country is number 2 on this list? US. Maine kaha yaar, US? Even the people from the US are reacting to this in the comment section with those crying smileys. Matlab, this is one of those occasions. Then please, bhai, thoda sa to chat GPT kar lo. Yeah, today is the day to appreciate artificial intelligence. Yeah, today is the official day to appreciate artificial intelligence. Maine kar liya. I did a bit of a chat GPT on this and said ke, which are the top 10 countries with the spiciest cuisine. Number 1 is Sada Bharat, India. Number 2 is Thailand. Number 3, China. Now that is a list that actually you can depend on. Number 4 is Mexico. It's a bit surprising that given that it is above Malaysia and South Korea, then there's Indonesia, Sri Lanka, Ethiopia and Jamaica. Ye hoti hai badhiya wali list. So this Instagram account, you can just Shut Up and Bounce. Gaana. Coming up in just a while. और आपको याद दिला दूं, इट इज ओपन, फोन लाइंस आर ओपन, नॉट द फोन लाइंस बट द व्हाट्सएप लाइंस आर ओपन, 0543091062। वी आर कॉलिंग फॉर एंट्रीज, दिस इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ द बिग समर सरप्राइजेस। अगर आप एक अमेजिंग स्टेकेशन जीतना चाहते हैं, द रिक्सॉस अलमायरेड इन रसल खैमा, BSS स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप करो, करते रहो 0543091062 पर।

0: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamualaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
6: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
5: अलरास बोले तो?
6: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
5: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
7: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: Insurancemarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. Insurancemarket.ae.
7: The Big Mix miss kiya gaya.
9: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
10: एलाइशा, क्या करते हो, क्या कर रहे हो?
11: मैं एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट में होती हूँ और अभी लंच ब्रेक के लिए घर आई हूँ।
10: फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से मुझे बड़ा डर लगता है।
11: हम कुछ भी नहीं करते बेचारे।
10: That's the problem. आप कुछ भी नहीं करते हो जब करना होता है।
11: हम सब मन से काम करते हैं।
10: तो अगर आपने बताया कि श्रद्धा कपूर के फैन हो, ये डायलॉग कम्प्लीट करो, वो स्त्री है।
11: नहीं, मैं नहीं हूँ।
10: अरे, वो स्त्री है का डायलॉग कंप्लीट करो। वो स्त्री है डैश डैश डैश है।
11: एकदम प्रेशर पे मैं भूल गई।
10: इतनी लंबी लंबी आपने छोड़ी है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ये हूँ, मैं फ्री टाइम ऑब्सेशन। एक डायलॉग कंप्लीट करो। मैं नर्वस हूँ, मैं नहीं बोलती।
11: अरे इवन उनके फादर का नाम भी भूल गई।
10: फादर का नाम भूल गए।
7: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
12: Morning peak, 8:30 on this Thursday ki subah, Jumarat, 16th of July. Let's take a look sabse pehle at Alkhel Road. Things are looking much, much better. There was a sudden like spike in traffic kuch time pehle. Ab wahi usual. D3 going towards business way, you'll find 5-6 minute ki there. D71 pe traffic is picking up, heading towards Dubai Mall. Then there's a bit of congestion going towards Dubai Frame already. D75 Sheikh Rashid Street par. Iske alawa D78 is a bit congested, and this is heading towards Dera Clock Tower wala jo area hai. Then the usual 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Beirut Street D62 par in both directions, right outside Madina Mall. And then there is traffic 6-7 minute ka aaj. Nasma Central Park heading south going towards Al Abir, and this is 611 Emirates Road.
7: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसको जोड़ना क्यों? इफ इट एंट ब्रोक वाई फिक्स इट? सुना होगा आपने
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: मतलब वन स्पोर्ट दैट इंसिस्ट ऑन काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग इट्स स्पेक्टेटर्स इज क्रिकेट. मतलब कुछ ना कुछ तो मरम्मत चलती ही रहती है उसके अंदर, चाहे वो रूल बुक हो, चाहे वो टूर्नामेंट के फॉर्मेट हो. नाउ द लेटेस्ट इज दैट T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इज गोना बी अ बिट डिफरेंट देन व्हाट इट वाज व्हेन इंडिया वॉन इट लास्ट ईयर. सो क्या होगा कि इस बार जो नया फॉर्मेट है उसमें ग्रुप स्टेज में 30 गेम खेले जाएंगे इंस्टेड ऑफ द 40 गेम्स. 5 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच एंड 2 टीम्स From each group will progress, right? So, 10 टीमों का एक सुपर 10 होगा. लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो सुपर 8 था. सिंसर ऑफ सुपर 8 इज गोना बी सुपर 10. 2 ग्रुप्स ऑफ 5 टीम्स ईच, या एंड देन द टॉप टीम इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. बचे 2 स्लॉट्स इन द सेमीफाइनल्स. नाउ फॉर दीज 2 स्लॉट्स इन द सेमीफाइनल्स, द टीम दैट इज सेकेंड विल प्ले अगेंस्ट द टीम दैट इज थर्ड इन द ऑपोजिट ग्रुप एंड वाइस वर्सा. राइट, सो ये 2 एलिमिनेटर होंगे, उसमें से जो टीम्स जीती दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल. सो इन इफेक्ट देयर आर गोना बी 2 एलिमिनेटर्स एंड देन 2 सेमीफाइनल्स एज वेल बिफोर द फाइनल इन द न्यू एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. या आई एम ऑल्सो स्क्रैचिंग माई हेड, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस. आई बात समझ में? अभिषेक बच्चन विद राइट हियर राइट नाउ कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. फ्रॉम राइट हियर राइट नाउ अबाउट 17 मिनट्स टू गो, वी गोना बी प्लेइंग द समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट. अगर व्हाट्सएप नहीं किया तो करो अब. BSS स्पेस देकर अपना नाम सेंड इट टू 0543091062. व्हाट्सएप टू 0543091062. यू कुड विन अ फैमिली स्टेकेशन एट द वंडरफुल रिक्सॉस अलमाइरिट इन रसल खेमा.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
1: नाम है सेड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
6: Namaste.
7: Hola.
6: Assalamu alaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
10: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Almyrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:07
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: राइट हम बिग 106.2 9:10 ये वो मौका है जिसका हर किसी को इंतजार होता है. बिग समर सरप्राइजेस, टाइम टू प्ले द समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट.
1: पार्टिसिपेट इन समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Rasal Khaima.
0: चलो पहले साहिल से बात करते हैं. साहिल, good morning. How are you doing?
2: Very good morning, Sid. How are you?
0: अरे बाप रे,
2: I'm so happy. यार मजा आ गया आपकी आवाज सुन के.
0: अरे मुझे और
2: दिन बन गया.
0: क्या साहिल, थैंक यू सो मच यार. मतलब गदगद हो गया मैं आपकी आवाज सुन के.
2: मेरी जान, मजा ही आ गया सच में.
0: साहिल, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर सो एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग यार? वो क्या
2: यार, यार बड़ी बात.
0: क्या खाते हो प्लीज बताओ यार. अभी तो सिर्फ फोन लगा है,
2: दिन बन गया.
0: अभी तो सिर्फ फोन लगा है, अभी तो नंबर भी लग सकता है. हम लोग खेलने वाले समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट. साहिल ये बताओ कि कल मैच वैच देखा, फुटबॉल देखा? लगता तो नहीं है कि आप रात को जागे होंगे.
2: सरकार मेरे को बस क्या बताऊं, रात को ना मैं भी टाइम पे सो जाता हूँ. अदरवाइज हाँ. अगले दिन ना ऑफिस में आंख ही बंद होती रहती है.
0: नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल करते रहो यार, बिल्कुल सही जा रहे हो आप एकदम. मतलब मजा आ गया. अगर मुझे इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके तो क्लाइंट्स को कितना मजा आता होगा यार. मतलब ऐसी साइन, चेक चेक चेक पे चेक साइन करते हो, खचाखच खचाखच खचाखच साइन. साहिल आ गया साइन, बस
2: सही आ गया साइन.
0: ऑलराइट, लेट्स से गुड मॉर्निंग एज वेल टू शिप्रा. शी इज इन कॉन्फ्रेंस विद अस. शिप्रा गुड मॉर्निंग.
3: हाय गुड मॉर्निंग सर.
0: आप बताओ आपने क्या खाया ब्रेकफास्ट में?
3: इसकी एनर्जी इतनी एनर्जेटिक है साहिल की, इसी को ही दे दो.
0: अरे हाँ, मतलब इफ आई वाज इन योर पोजीशन मैं भी ऐसे ही कहता कि यार ये लो मेरी तरफ से, जस्ट टेक माय मनी, टेक माय स्टेकेशन. बट शिप्रा ऐसा मत करो यार, वी हैव थोड़ा तो कंपटीशन दिखाओ, थोड़ा तो स्पिरिट दिखाओ.
2: हाँ ये मैं वैसे ही बड़ा ये क्या बोलते हैं इस गेम में ना, मैं वैसे ही कच्चा खिलाड़ी हूँ, बस एनर्जी ज्यादा है.
0: नहीं
2: मेरे
0: नहीं,
2: हिसाब से शिप्रा ही जीत जाएंगी.
0: शिप्रा ने मेरे को ऑलरेडी पूछ लिया नर्वस होके कि नहीं नहीं मुझे सेट बताओ पहले कि करना क्या होगा. मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा.
3: Because I have no idea what the game is. I just typed the message, you know.
0: Very good. That's how it's supposed to be. Okay. So what we're going to do is, बहुत ही आसान सवाल है. फिल्में तो आप लोग दोनों देखते ही होंगे. तो मैं आपको ना तीन गाने सुनाऊंगा. ओके एंड ये गाने जुड़े होंगे वेकेशन से, किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पे शूट किए हुए हैं, और दे कुड बी ट्रैवल सॉन्ग्स, यू नो किसी गाड़ी ट्रक के पिछवाड़े में शूट हुए हैं, समथिंग लाइक दैट. सो आपको इस गाने को सुन के फिल्म का नाम बताना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको फिल्म का नाम पता है तो आपको अपना नाम जोर से चिल्लाना है, लेकिन उससे पहले बिग भी लगाना है. सो साहिल, अगर आपको लगता है कि जवाब पता है, आपको क्या चिल्लाना है?
2: बिग साहिल.
0: यस. और शिप्रा आप क्या चिल्लाओगे?
3: Big Shipra.
0: Very good. You got to try and match Sahil's energy, which I think is almost next to impossible. But try.
3: Okay.
0: तो कोई सवाल, कोई शक?
2: या शुरू करो. कोई शक नहीं, सरकार शुरू करो.
0: All right. Are you ready for the first one? The first yes. song is this one.
3: Big Shipra.
0: Shipra, बताइए.
3: दिल धड़कने दो.
0: साहिल क्या लगता है आपको, सही है गलत है?
2: बिल्कुल सही बात है, शायद मेरे को यही लगता है, दिल धड़कने दो ही गाना है.
0: ये आंसर सरासर गलत है. ओके गाइस, आई एम गोना गिव यू वन मोर चांस. अगर ये दिल धड़कने दो नहीं है तो कौन सी फिल्म है बजर पे?
2: बिग साहिल.
0: बिग साहिल
2: है ये धड़कने फिल्म है.
0: साहिल
3: एनर्जी,
0: आई थिंक हिंदी फिल्म का इतिहास काफी लंबा है, लेकिन इतिहास में धड़कने नाम की कोई फिल्म नहीं आई है भाई. धड़कन थी, धड़कने. अब मुझे शक हो रहा है साहिल पे कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया है साहिल ने.
2: मेरे को लगता है नींद उतरी नहीं है अभी तक.
0: शिप्रा यू हैव एन आंसर.
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
0: दैट इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द करेक्ट आंसर. इट इज नॉट दिल धड़कने दो, इट इज नॉट धड़कने, इट इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सो 1-0 इन फेवर ऑफ शिप्रा. साहिल बकअप, गेट सीरियस, गेट कंपेटिटिव. अगर इस सवाल का जवाब सही से दे दिया शिप्रा ने, हर नेम गोज इनटू द ड्रॉ. ऑलराइट, द सेकंड सॉन्ग इज दिस वन.
2: बिग साहिल.
0: बिग साहिल.
2: कॉकटेल
0: इज द करेक्ट आंसर.
2: सरकार.
0: ओके यार, एक्चुअली यूएई में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको चीयर ना कर रहा हो ऑन दैट क्वेश्चन. आई थिंक एवरीबॉडी वाज एवरीबॉडी नहीं नहीं मैं इस सवाल में बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी वाज होपिंग कि यार टाई ब्रेकर हो जाए और साहिल से कुछ देर और बात करने का मौका मिल जाए.
2: बट मेरी जान,
0: चलो रेडी टाई ब्रेकर, वी आर डाउन टू एक्स्ट्रा टाइम इन दिस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल. आर यू गाइस रेडी? लास्ट एंड फाइनल टाई ब्रेकर, जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया वो ये कॉन्टेस्ट जीत गया. Song is this one.
2: Big Sahil.
0: Big Sahil.
2: Heaven, heaven.
3: Highway.
2: Highway, highway, highway.
0: सोच लो भाई, heaven.
2: Highway, highway.
3: For sure it's highway.
0: Highway is the correct answer. यार साहिल, इतना एंटरटेनमेंट मेरा कभी किसी कॉलर ने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ. ये कौन सी फिल्म है? धड़कने एंड हेवन. शिप्रा, शिप्रा यू हैव टू अग्री विद मी कि चलो आपका नाम ड्रॉ में नहीं गया, लेकिन एंटरटेनमेंट तो आपका पिछले 10 मिनट में बहुत हुआ. सही बताओ,
3: जिस हिसाब से इस बंदे की एनर्जी थी ना, इसको ड्रॉ भी दे दो.
0: यार शिप्रा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कंटेंट, शोइंग सच गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. वी गोना यू नो गिव यू वन मोर चांस. कल एक और, कल आखिरी मौका है बाय द वे, सो कीप मैसेजिंग, ऑलराइट, कीप व्हाट्सएपिंग, बट एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.
3: ओके, सी यू, बाय
0: बाय.
2: दिन बन गया, तो दिन बन गया
0: भाई, अभी तो शुरुआत है. आपका नाम ड्रॉ साहिल मेरे भाई. यार यू आर एन एग्जांपल, यू आर एन एग्जांपल कि एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए सुबह सवेरे.
2: सरकार मेरे ऑफिस में ना कम से कम 150 इंसान है, मैं हर एक को जा के बताऊंगा भाई यार तो जीत गया.
0: एक और ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो ना. एक काम करो, क्यों इतनी फिजिकल मेहनत कर रहे हो?
2: सरकार नहीं, पर्सनल
0: जाके करूंगा, उसमें जितना मजा
2: है को बताने.
0: वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. या तो साहिल, लेट मी नाउ टेल यू कि आपने जीता क्या है. आपका नाम ड्रॉ में चला गया फॉर विनिंग दिस अमेजिंग स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अल्माइरिड इन रसल खेमा. ड्रॉ में ज्यादा दिन बचे नहीं है, सो यू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग. लेकिन ऑन द स्पॉट इस वक्त आपने जीते हैं 2 मूवी टिकट्स प्लस एक F&B वाउचर एज वेल, सो कांग्रेचुलेशन.
2: Thank you
0: so much. Can't thank you enough for taking part in our contest. Maza aa gaya aapse baat karke Sahil. All the best for the draw and enjoy the rest of your Thursday, all right?
2: Bye bye Sahil.
0: Take care, bye.
2: Din bana diya.
0: Abhi to aapka mahina banayenge, ab ruko. That is Sahil, hamare aaj ke winner hain, draw entrant hain. We got one more day. Kal aakhri din hai for big summer surprises. So Sahil ki tarah, Shipra ki tarah, keep WhatsApping. WhatsApp thok ke bhav mein bhejte raho. Bhav bilkul zero hai, absolutely for free. All you got to do is just type out BSS for big summer surprises. BSS space dekar apna naam and send that as a WhatsApp to 0543091062. Big summer surprises made possible by our presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almighty Russell Khema. Don't forget, kal aakhri din, Friday morning, one more time, one more name goes into the draw in the big summer surprises. And also don't forget, on the spot prizes and 2 movie tickets and an F&B voucher as well. Big 106.2.

0: इंडिया वर्सेज इंग्लैंड आज सेकंड ओडीआई खेला जाने वाला है. आई मीन मच मोर एक्साइटमेंट देन द फर्स्ट ओडीआई बिकॉज इट वाज राइट ऑन द बैक ऑफ दैट वाइट वॉश इन द टी20 सीरीज, बट वी मैनेज्ड टू विन द फर्स्ट ओडीआई. सो अच्छे दिन आने वाले.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: लेकिन जब भी कोई सीरीज होती है इंग्लैंड में तो एक आंख हमारी ऊपर आसमान की ओर होती है. आसमान में टैना, इज देयर एनी चांस ऑफ रेन इन कार्डिफ वेल्स? लगता तो नहीं है. झिलमिल हल्की फुल्की सी बारिश जरूर हो सकती है. The kind that might have the potential to kind of reduce 4 to 5 overs, but nothing major. That's what the prediction is. And India versus England, I was just looking at this statistic. Totally 112 ODI khele hue, and India has 163 of them. Nazar na lage when 56 is the median. We've just about won more than 50% of the game. So dekhte hain aaj kya hone wala hai. In the last one, it was a so-so comeback for Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah. But yeah, we're hoping that they're just getting kind of warmed up. So aaj ka jo ODI hai is going to be at 4 PM yaha UAE time, India taking on England. Chunri chunri, the let's go version. I love how they put these taglines. सिर्फ ब्रांड के नहीं, अब गानों के भी टैगलाइन होने लगे हैं. गाने अपने आप में ब्रांड ही होते हैं यार, क्यों ना हो. चुनरी चुनरी का लेट्स गो वर्जन फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है कमिंग अप इन जस्ट व्हाइल टॉकिंग अबाउट गेम. द बिग बॉलीवुड क्विज इज आल्सो कमिंग अप इन जस्ट अबाउट 5 to 7 मिनट्स. इन केस यू वांट टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल, वील गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: हैबिट रिपोर्ट के कहीं पर अनयूजुअल ट्रैफिक नहीं दिख रहा है मुझे. देयर इज 44 का यूजुअल गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3. यू विल फाइंड 4-5 मिनट की वे. D71 वी हेडिंग टुवर्ड्स दुबई मॉल, अ बिट ऑफ कंजेशन. देन देयर इज 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ दीज आर ट्रीज 7 to 8 मिनट्स ऑन एन एवरेज यू विल स्पेंड एक्स्ट्रा. देन देयर इज D62 बेरूत स्ट्रीट पर हेडिंग साउथ टुवर्ड्स मदीना मॉल, यहाँ पर 4-5 मिनट की देर. 611 एमिरेट्स रोड के क्या हाल है, यहाँ पर भी 4-5 मिनट का कंजेशन हेडिंग टुवर्ड्स अल अवीर हेडिंग साउथ. इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood. Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: है जवानी तो इश्क होना है, धमाल फोर, ये सब फिल्में हमको बहुत पसंद है यार। 124 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है धमाल फोर ने।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Our favorite genre is an entire sentence. दिमाग घर पे छोड़ो और फिर पिक्चर देखने के लिए जाओ। इस genre की एक पूरी सीरीज है and I'm going to be asking you a question based on this. It is time to play the Big Bollywood Quiz. Today is the International Day of the Snake. नहीं, इंसानों वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल जो सांप होते हैं ना उनको सेलिब्रेट करने का दिन है आज। इट जस्ट गिव्स मी एन एक्सक्यूज टू प्ले वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीक्वेंसेस इन अ फिल्म सीरीज। व्रजेश हिरजी कौन सी फिल्म सीरीज में ऑलमोस्ट एक सांप बन जाते हैं? इज लाइक द मेल वर्जन ऑफ वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन दैट, ये जो नागिन टाइप का है जो उसका क्या होता है, इज देयर अ नेम फॉर अ मेल वर्जन ऑफ अ नागिन, जो भी है, दैट इज व्रजेश हिरजी इन दिस फिल्म सीरीज। इसको सुनिए, बताइए कौन सी फिल्म सीरीज में इस तरह के सीन्स थे।
2: क्या रे, तुम लोग इससे क्यों डर रहे हो?
3: ये पहले मैं नहीं था ना, तू जा
2: और नहीं तो क्या, कह रहे पाव किलो के पाइथन बहुत भूखा रह ला है भाई, चले सिम कट, चल निकल तेरी तो क्या है, इससे डर रहे हो तुम लोग, कमाल करते हो। ओले बापले, एंटोनी को गुस्सा आ गया, हाँ बोल ना, ए सफेला दूध पिएगा, हाँ क्या कर रहा
0: है? पाव किलो के पाइथन किसने

0: किसने आई एम नॉट गोना आस्क यू सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये पूरी सीरीज है, एक सीरीज का नाम क्या है, स्पेसिफिक फिल्म का नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ, सीरीज का नाम क्या है. अगर आपको पता है इस सीन को सुन के, इफ यू नो द करेक्ट आंसर गिव मी अ कॉल, 800-1062 इज द नंबर, 800-1062 पे सही जवाब दीजिए एंड यू कुड विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जेटोर यूएई. ड्राइव योर फ्यूचर, पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग.
3: नमस्ते.
4: ओला.
3: अस्सलाम वालेकुम.
5: बोंजूर.
6: नी हाओ.
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो. इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. नो स्क्रोलिंग. विजिट selfdrive.ae. सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू.
7: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
2: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: Hey,
2: jaldi
8: tera khada ra. Chal hata. Are jaldi tera chinda.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, it's 9:44 on the clock on this Thursday. So let's start with the capital, Abu Dhabi. हल्का फुल्का ट्रैफिक शुरू हो गया है मुसफा इंडस्ट्रियल पर E30. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स रमदान एंड देन आजकल जो यूजुअल हो गया है विच इज हेडिंग टुवर्ड्स बनियास मफराक इंडस्ट्रियल पर E11 की मैं बात कर रहा हूँ हेडिंग नॉर्थ. यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन, 3-4 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर लेकर निकलेगा. देन देयर इज चलते हैं दुबई शारजा की ओर. 311 E11 द यूजुअल आर्टरी हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यू फाइंड 7-8 मिनट्स का डिले, लेकिन 11 मिनट का स्लो डाउन है 44 पर. द ट्रैफिक वॉज गेटिंग अ बिट बेटर बट नाउ इट सीम्स टू गॉटन अ बिट वर्स. ऑल द वे फ्रॉम रसल कोर्ट टिल ऑलमोस्ट अलकूस फोर्थ यूल फाइंड दिस एंटायर पैच ऑफ स्लो मूविंग ट्रैफिक. इनकेस आपको कुछ दिखता है ट्रैफिक वाइज, गिव मी अ कॉल इफ इट्स सेफ, 800-1062 पर.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: It's 9:51 on the clock. We are playing the Big Bollywood Quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Ekdam nice and relaxed Naresh with me on the phone line. Good morning, Naresh. Kya hal chaal hai?
2: गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है यार. मतलब नरेश, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप कभी लाइफ में टेंशन लेते ही नहीं हो, सिर्फ देते हो. एम आई राइट?
2: टेंशन लेते भी है, देते भी है.
0: अच्छा, लेते तो किससे है तो पता होगा, पता है मेरे को. मतलब बॉस वॉस होंगे ये, यू नो, इस तरह के प्राणी आपको देते हैं टेंशन. बट आप देते किसको टेंशन यार?
2: देते फैमिली को. बॉस की टेंशन लेके फैमिली को देते.
0: नरेश, ये जो देसी लूप है इसको करतार को ये एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं यार. फुल मार्क्स फॉर ऑनेस्टी. वेरी ऑनेस्ट.
2: गिव एंड टेक होना चाहिए. गिव एंड टेक.
0: हाँ यार, मतलब हमारी देसी लाइफ इज ऑल अबाउट लेन देन. कुछ लेन देन की बात हो रही है. बट नरेश बताइए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि ये पाव किलो का पाइथन एक मूवी सीरीज में था जिसमें व्रजेश हिरजी टर्न्स इनटू दिस आई डोंट नो मेल वर्जन ऑफ नागिन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिल्म सीरीज का नाम क्या है?
2: गोलमाल 2.
0: अच्छा, आपने फिल्म 2 स्पेसिफिक. भाई क्या बात है नरेश, कांग्रेचुलेशंस. आपने साबित कर दिया कि आप बड़े बॉलीवुड फैन हैं. एंड दीज 2 ओपन मूवी टिकट्स आर ऑल योर्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. क्या प्लान है, कुछ वीकेंड का कुछ प्लान बना रहे हो अपार्ट फ्रॉम गिविंग टेंशन टू घर वाले?
2: वीकेंड का देखते हैं, बच्चों को कहीं घुमाने या मूवी ले जाएंगे. अभी टिकट जीत दिए तो मूवी ले जाएंगे.
0: चलो बढ़िया यार, दैट्स अ गुड प्लान, वेरी गुड प्लान. नरेश थैंक यू सो मच. थोड़ा कम टेंशन दो और लो भी. ऑलराइट,
2: Thank you so much.
0: That is Naresh, हमारे आज के विनर हैं. Don't forget, रोज सुबह ये मौका आपके पास to win 2 open movie tickets in the Big Bollywood Quiz. Today is the World Snake Day. विश्व सांप दिवस में आज भी. That's why we were remembering गोलमाल का वो scene. This is the Big Breakfast with me, Sid. There's a picture that is doing the rounds of Messi and Yamal right before the final, Spain versus Argentina. More on that coming up in just a while. Keep it locked to Big 106.2, a part of the Funisha Network.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड. सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल. योर हेल्थ मैटर्स.
4: 3, 2, 1, and they're off. It's Sharaf DG's exclusive bundle offer. New wheels, big screens. Get a Geely car plus TCL 65-inch TV from 42,999 dirhams. Drive home your new M-Grand or City Ray today. Book now for just 4,999 at Sharaf DG. T&Cs apply.
5: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. 3 pizzas and sides, all in one towering box, in 3 sizes. Plus ice cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's, better ingredients, better pizza.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कहानी ऐसी होती है जिसके को सुनाने के बाद भी कहना पड़ता है, हाँ मान मेरी बात यार, I'm actually telling you the truth.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: So a couple of sisters, they checked into an Airbnb. और अगर आप किसी दुनिया के किसी कोने में, अगर आप किसी Airbnb में गए हैं, तो you know the first thing that you do is kind of look around, you know, check the balcony, कैसा view है, you know what the amenities, facilities are out there inside the home, सब कुछ सही है कि नहीं, as posted, etc. So they're looking around. एंड एक लॉबी मिली जिसमें कुछ फ्रेम्ड पिक्चर्स हैं, फ्रेम फोटोग्राफ्स हैं, राइट? सो दे आर लुकिंग एट इट अ लिटिल बिट क्लोजर एंड गेस व्हाट दे फाउंड इन वन ऑफ दोज फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स, दीज सिस्टर्स एक्चुअली फाउंड देमसेल्व्स. दे फाउंड देमसेल्व्स. व्हाट आर द चांसेस कि आप किसी एयरबीएनबी में चेक इन करते हैं और वहां पर जो फ्रेम फोटोग्राफ लगी हुई है उसमें आप, इट्स अ पिक्चर ऑफ यू. या आई मीन टू बी फेयर, इट्स नॉट लाइक कि दीज टू सिस्टर्स की पर्टिकुलरली लाइक उनका क्लोजअप था, नहीं, इट वाज लाइक अ एरियल शॉट ऑफ सम पीपल एट द बीच, बट इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल दीज टू सिस्टर्स वर ऑल्सो देयर. बट वॉट आर द चांसेस यार, आई मीन वॉट आर द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग योर ओन फ्रेम फोटोग्राफ एट द एयरबीएनबी दैट यू हैव एक्चुअली चेक्ड इन. यार लाइक आई सेड, ट्रूथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन. काफी हॉरर फील आती है ना इस कहानी को सुनकर. वेलकम टू द जंगल से ऊंचा लंबा कद, फॉरएवर कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. This is a big breakfast with me, Sid and Finn. In case you are ready for a serious SUV upgrade, check out the latest deals from Jetro. Drive home a brand new Jetro, 0 watt or 0% interest and 1 million kilometers ki warranty. Enjoy up to 10,000 dirhams ka cashback and free insurance on select models. And the best part is buy now, pay next year. Your dream SUV could be yours with EMI starting at just 966 dirhams a month. Head to Jetro showrooms, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain, or take it for a spin today. Jetro UAE, part of the Elite Group Holding. T's and C's do apply.
1: Big 106.2.

0: कहाँ डर रही है? मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम सबके बचपन का गाना बिजूरिया राइट ऑन बिग 106.2. एक हमारी बचपन की फिल्म इज उसका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट इज आउट, टॉय स्टोरी 5.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: एंड पापा जॉन द टॉय स्टोरी 5 पिज़्ज़ास हैव लैंडेड ब्रिंगिंग मूवी इंस्पायर्ड फ्लेवर्स टू योर नेक्स्ट मील. ट्राई द स्पेस रेंजर रोनी लोडेड विद डबल पेपरोनी फॉर अ बोल्ड मीटी बाइट. राउंड अप योर एपेटाइट विद द शेरिफ्स राउंड अप टॉप विद द बारबेक्यू चिकन एंड अनियंस. रीच फॉर द पाई, एंजॉय डिलीशियस कॉम्बो ऑफ इटालियन सॉसेज एंड बनाना पेपर्स. ऑर्डर एनी टू और मोर Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
4: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: This is Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2, the beat of Bollywood. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. मिस किया गया
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: एलाइशा, क्या करते हो, क्या कर रहे हो?
3: मैं एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट में होती हूँ और अभी लंच ब्रेक के लिए घर आई हूँ।
2: फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से मुझे बड़ा डर लगता है।
3: हम कुछ भी नहीं करते बेचारे।
2: That's the problem. आप कुछ भी नहीं करते हो जब करना होता है।
3: हम सब मन से काम करते हैं।
2: अगर आपने बताया कि श्रद्धा कपूर के फैन हो, ये डायलॉग कम्प्लीट करो, वो स्त्री है।
3: नहीं, मैं नहीं हूँ।
2: अरे, वो स्त्री है का डायलॉग कंप्लीट करो। वो स्त्री है डैश डैश डैश है।
3: एकदम प्रेशर पे मैं भूल गई।
2: इतनी लंबी लंबी आपने छोड़ी है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ये हूँ, मैं फ्री टाइम ऑब्सेशन। एक डायलॉग कंप्लीट करो, मैं नर्वस हूँ, मैं नहीं बोलती।
3: अरे इवन मैं उनके फादर का नाम भी भूल गई।
2: फादर का नाम भूल गई।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 105 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिल्कुल सही, 115 हो चुके हैं. जोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स और हमने शुरुआत की है इस घंटे की विद द बिग बॉलीवुड अंडरकवर. चार क्लूज मैं आपको दे रही हूँ एंड यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई किस सेलिब्रिटी की आज बात हो रही है जिन्हें छुपा छुपा कर इन क्लूज के जरिए मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके लेट्स गो. वेरी वेरी बिग नेम, ठीक है, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं. बट बिफोर बींग लॉन्च्ड बाय करण जोहर एज एन एक्टर, ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन माई नेम इज खान. ही इज द सन ऑफ अ रिनाउंड बॉलीवुड डायरेक्टर हुज मेड सम ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी क्लासिक्स. इनके पापा ने इनको निकनेम दिया है पप्पू का एंड ही रिसेंटली वेंट इनसेनली वायरल फॉर हिज क्रूकिड स्माइल. ऐसी टेढ़ी टेढ़ी सी स्माइल देकर, क्यूट क्यूट सी स्माइल देकर वायरल हो गए, मतलब मीम बन गए. इनकी स्माइल के ऊपर 50,000 मीम बन चुके हैं. दैट इज व्हाट हैपेंड विद हिम रिसेंटली. ओके सो ही वाज लॉन्च्ड बाय करण जौहर एज एन एक्टर, लेकिन उससे पहले ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन माय नेम इज खान. ही इज द सन ऑफ अ रिनाउंड बॉलीवुड डायरेक्टर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी क्लासिक्स बनाए हैं. इनके पापा ने इनको निकनेम दिया है पप्पू का एंड ही वेंट इनसेनली वायरल फॉर हिज क्रूकिड स्माइल रिसेंटली. किस एक्टर की मैं बात कर रही हूँ? इफ यू थिंक यू नो द राइट आंसर, बस कॉल करना है मुझे ऑन आवर टोल फ्री नंबर, दैट्स 800-1062. कॉल करो मुझे 800-1062.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगता था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली
1: बिग 106.2। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Listen to her every day.
3: Mugambo! Khush hua!
4: Subhash, I want to ask you this question. I came across this research that says ke 87% men, jaisi unki girlfriend banti hai, wo apne doston ko bhool jate hain. To aapne ye kiya hai, jab college ke time pe koi girlfriend bani to doston ko bhool gaye?
5: Mere saath aisa ho gaya hai. Maine actually main nahi choda tha, lekin log mujhe bolne lag gaye the ki main chhod diya. Matlab girlfriend milne se koi friend ko kaise chhod sakta hai?
4: Friend ko time nahi dete hain ladke. Jaise hi girlfriend aati hai, sara time girlfriend ko dete hain. Friends ko time nahi dete hain.
5: Time nahi dena ka matlab to ye nahi hai ki humne chhod diya.
4: तो ये कॉलेज के टाइम की बात है?
5: हाँ, कॉलेज के टाइम की बात है।
4: फिर उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ?
5: अरे पूछो मत, कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, आई एम मैरिड नाउ।
4: नाउ ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू नो कि जिसके लिए आपने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी वो रही कि नहीं रही आपके साथ?
5: नहीं रही ना।
4: इसलिए हमेशा दोस्तों को आगे रखो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं, दोस्ती का कंधा काम आता है रोने के लिए।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: ट्रैफिक हाल फिलहाल, अगर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ, आपको मिलेगा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे लाइट ट्रैफिक। ये शुरू हो रहा है थवार 4 से गोइंग ऑल द वे अंटिल S112 मल्लीहा रोड, आपको मिल जाएगा मॉडरेट ट्रैफिक, अबाउट अ 10-12 मिनट डिले ऑन दैट रोड। E11 इतिहाद स्ट्रीट, अगर आप जा रहे हैं नादा 1 की तरफ, तो अलखबैसी स्ट्रीट के पास आपको मिल जाएगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 7-8 मिनट्स। उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक E44 अलखेल रोड, D3 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक है, 5-6 मिनट का डिले। रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है ऑन 11A स्ट्रीट, जिसकी वजह से आपको मिलेगा 7 मिनट का डिले। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप 0543091062।
1: Sia, Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स On Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. This is The Big Mix with me, Zohra, right here on Big 106.2. The beat of Bollywood. With me on the phone line right now is Sneha. Hi, Sneha. How are you?
2: Hi Zohra, I'm good. How are you?
1: Very, very well. Sneha, maine char clues diye the. I'll get straight into it. Theek hai? This actor was launched by Karan Johar, lekin usse pehle he worked as an assistant director on My Name Is Khan. He is the renowned Bollywood director ke bete who has made some of the biggest comedy classics. Inko Pappu ke naam se inke papa bulate hai and he went viral for his crooked smile. Which clue gave it away to you?
2: The viral smile.
1: Viral smile. उससे पहले नहीं
2: guess किया.
1: करण जोहर ने launch किया ये it makes the pool very छोटा उसके बाद ही right.
2: Yes.
1: You start guessing करण जोहर ने किस किस को launch किया है ना.
2: Yes.
1: But if I had only said कि पप्पू इनका nickname है तब तो नहीं पता चलता ना. Did you know he was called पप्पू?
2: No, I didn't know about it.
1: Like you know the famous nicknames, but I don't think वरुण धवन का पप्पू किसी को पता है.
2: नहीं पता.
1: हाँ अच्छा तो आंसर क्या है बताना. मैंने तो आंसर भूल ही दिया अभी तो.
2: आई नो
1: वरुण धवन. यस दैट्स राइट. टेल मी समथिंग. इनकी जो स्माइल वायरल गई है ये क्रूकेट स्माइल, डू यू थिंक इट वाज समथिंग जिसका मीम बनना चाहिए था? डू यू फाइंड इट क्यूट?
2: आई डोंट केयर ऑनेस्टली.
1: I don't care about a guy's smile. Who cares?
2: Love it.
1: No, because I personally think that the way he smiles is very cute. So, mujhe laga is pe matlab meme ban gaye. People started comparing him with like, I don't know, cracked bulbs and cars and God knows what.
2: लेकिन कभी कभी उसका थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी लगता है मुझे.
1: आई थिंक
2: डूइंग एवरीथिंग.
1: अच्छा नॉट जस्ट द स्माइल, यू आर सेइंग ओवरऑल
2: Everything.
1: अरे इनका ओवर एक्टिंग लगता है तो आप रणवीर सिंह को क्या बोलोगे फिर? वो तो बाप है ओवर एक्टिंग के.
2: वो थोड़ा सा गुड बुक्स में है मेरे.
1: देखो यहाँ पार्शियलिटी आ रही है. चलो यार सिया, आई फील लाइक यू आर अ वेरी टफ क्रिटिक. मतलब रियल लाइफ में ये एक्टर्स आपके सामने आ गए तो आपको उनके मुंह पे बोल दो कि वरुण, आई डोंट लाइक योर स्माइल, चेंज द वे यू स्माइल. चलो यस यस,
2: जो है सामने होना चाहिए.
1: बिल्कुल सही है यार. आई फील लाइक यू आर अ वेरी यू नो जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन. वैसी रहो. एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू यस स्नेहा.
2: थैंक यू,
1: हैव अ ग्रेट डे, बाय.
2: स्नेहा
1: ने कहा आई डोंट केयर यार कैसे हंसना है तुम्हें, हंसो सीधा मुंह टेढ़ा मुंह जैसे हंसना हंसो, किसको पड़ी है. बट यस दैट वाज वरुण धवन जिनकी मैं बात कर रही थी. वेरी वेरी सिंपल क्लूज थे आज के. मैं ना थोड़ा सा डिफिकल्ट करने वाली हूँ, कल से इतना डिफिकल्ट कर दूंगी ना किसी को नहीं पता चलेगा. देखते हैं मेरे मतलब टैलेंट पे आप शक करने लगे अब तो यार.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चित्रा की आवाज रफ्तार रफ्तार गाने का नाम राइट हियर ऑन बिग 106.2 दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड 145 हो चुके हैं जोहरा के साथ अपॉन द बिग मिक्स एंड वी आर हेडेड इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो जिस घंटे मैं आपको देने वाली हूँ एक फ्रेश फ्रेश बॉलीवुड गॉसिप ऑन द बिग बॉलीवुड टी स्टिक अराउंड विद मी ऑल द वे अंटिल 5 PM

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 2:15 ho chuke hain. Zohra ke saath on the Big Mix. Filhal on the Big Bollywood tea hum baat kar rahe hain Akshay Kumar ki. Kyun? Because I felt like, yaar, honestly, meri Akshay Kumar se bahut high expectations hoti hain whenever, you know, any comedy movies around the corner. I feel like he's got to pull through because we expect him to do a good job. But agar wo nahi ho pata for some reason, I feel, ठीक है, टेक अ ब्रेक, है ना, टेक अ ब्रेक. यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू वेल उस जॉनर में, तो मे बी थोड़ा, यू नो, हाथ पैर आपको मारने चाहिए, एक्सप्लोर करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो. आई थिंक अक्षय कुमार गॉट द हिंट, ही रियलाइज दैट, एंड उन्होंने एक, यू नो, पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले, विच जस्ट सेड, बहुत हंसा लिया, अब कल से हैवानियत शुरू. एंड एवरीवन वाज लाइक, ये क्या चल रहा है, मतलब इज ही टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम कॉमेडी मूवीज? एंड येस ही इज, बिकॉज ही इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच साउंड्स सो ऑसम. ओके, चेक दिस आउट. मूवी का नाम है Van. He has also put up a poster of it on his Instagram and maine thoda sa research kiya is pe. So basically it is starring him and Saif Ali Khan. This one line is enough for me to, you know, just go and watch the movie blindly. It says, a blind martial artist protects a girl from a psychopath killer. Bas! Wow! It is so engaging. Is ek line se hi, I feel like, wow, if Akshay Kumar is playing a blind martial artist, that is what you've been waiting for. Aap galat projects utha rahe the, because this one will definitely bag you a lot of love and a lot of, I think, critical acclaim. Blind martial artist, I think he's going to be playing the blind martial artist because he's good with martial arts. We all know that. And I think Saif Ali Khan might just be playing the psychopath killer. But this is what the best part is. So this is an adaptation, theek hai? Malayalam movie थी 2016 में, जिसको प्रियदर्शन ने बनाया था, एंड ही इज हिमसेल्फ मेकिंग द हिंदी अडैप्टेशन. नाउ प्रियदर्शन से यूजुअली, यू नो, यू माइट थिंक कि वो अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन कॉमेडी मूवी फिर से बन रही होगी, बट नो, दिस इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर विच मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग. इट्स एन अडैप्टेशन ऑफ हिज वेरी ओन मलयालम मूवी इन 2016 जो बनी थी, ओपम इस मूवी का नाम था, एंड इसका ये अडैप्टेशन बन रहा है. एंड ऑल्सो दिस मार्क्स द 18 ईयर रीयूनियन ऑफ अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान, सो ऑल द मोर रीजंस फॉर यू टू गो वॉच द मूवी. आई थिंक 11 सितंबर को रिलीज हो रही है. सो अक्षय कुमार की पास्ट मूवीज, आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन इट, बट आई फील लाइक दिस इज डेफिनेटली वन मूवी विच आई बी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर, एंड आई हैव माई होप्स एक्सट्रीमली अप.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली
8: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: 40 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी 43% पे, आज टेम्परेचर सिर्फ 40 तक जाएगा, लोज एक्सपेक्टेड है 33 आज शाम। वेरी गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
10: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
11: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: शान की आवाज सुनो ना। हाँ जी यार, शान की आवाज तो सबको सुननी चाहिए, बट बहुत ही प्यारा गाना आपने सुना। दैट वाज द फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae, दैट ब्रिंग्स टू यू मोर देन जस्ट द सॉन्ग। यार, द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, इन्हीं के पास आपको मिलेंगे एट जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। यहाँ पे कोई स्ट्रेस की बात नहीं, नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ एट जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। सेल्फ ड्राइव, यू कैन गो सर्च देम selfdrive.ae पे, और यू कैन चूज टू डाउनलोड द app. Now this is Self Drive, your car, your price, your way.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Yes, Alisha Chennai, yaar, I really wish she makes some big comeback. कोई भी मूवी हो यार, बड़ी मूवी हो छोटी मूवी हो, बस Alisha Chennai का कमबैक हो गया ना तो वो सबसे बड़ा होगा, इतना मुझे पता है. What a queen, early 2000s के सारे गाने, she's ruled. Anyway, it is 2:47 on the big clock, heading into our number 3 of the show. My name is Zohra, आपके साथ शाम 5 बजे तक on the big mix.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 3:06 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही यार, जोहरा के साथ on the Big Mix. फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ बचपन में हुई है that you know has just shaped how you are, your personality, आप जैसे हो. You know the song, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, आपको अपने मम्मी पापा से पूछना चाहिए, because a lot of things that they did while raising you, वो चीज़ों ने आपको shape किया हुआ है. Now, I have this article in front of me that puts down a few of these points. Some of them I really, really relate with, okay? जैसे पहला, being praised only for, you know, getting good grades or good things. Yeah, I think हर देसी household में हर बच्चे के साथ ये होता आया है, especially millennial बच्चों के साथ तो definitely होता आया है. ओनली इफ यू गेट गुड ग्रेड्स तो आपकी तारीफ होती थी. अगर आप सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, तो मतलब ये पूछ लिया जाता, अरे क्यों ये मार्क क्यों कटे. वो बहुत ज्यादा हाउस होल्ड में हुआ करता था. नाउ इट इज ऑफ कोर्स बहुत कम हो चुका है वो, बिकॉज अब मेंटेलिटी थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है, बट पहले वो आ ही जाता था कि शर्मा जी के बेटे को मिल गए तो तुम्हें क्यों नहीं मिले. नंबर टू, ऑलवेज बींग कंपेयर्ड टू सिबलिंग्स और कजन्स. ये भी बहुत ही देसी चीज है, वेरी लाइक एशियन कोडेड दिस इज. अ लॉट ऑफ एशियन पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ये करने का, कंपेयरिंग यू टू यू नो फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, जस्ट एज आई सेड शर्मा जी का बेटा वाला सीन. सो ईदर इट बिकम्स समथिंग दैट मेक्स यू very very highly competitive because you're constantly being compared, right? उस वजह से आप either बहुत competitive हो जाते हो या फिर you constantly feel like you are not enough. So आपका confidence completely टूट जाता है, shatter हो जाता है. So it affects you in that way. तो अगर अभी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा competitive हो, it is possibly because आपको बचपन से ही उसकी आदत रही है that you're constantly going to be compared. तो वो आप में वो उस वजह से trait आया है. Number three पे है growing up in a loud household. Because you grew up in a loud household, everyone was so loud with everything. You felt that, you know, maybe staying quiet is best to avoid conflict. Or you realize that, you know, only the person who speaks up loudly is going to be heard. Baki kisi ka opinion heard hi nahi hoga. So it either has shaped you to make you very loud because you thought that's the only way, or just going completely silent because you thought that's the best possible way to avoid conflict. Ek aur hai, which is being the only child. This I think a lot of people will relate. Main nahi, because I've had two siblings. But if you are the only child, you become very very comfortable with loneliness and you know you find ways to entertain yourselves. Abhi bhi main bahut aise logon ko janti hoon, because you know aapke siblings nahi hain, so you've realized that yaar isi mein hame khushi dhoondni hogi, because you didn't have anyone growing up, right? No partner to you know play around with or talk to or gossip with or anything. So you realized your you know loneliness is your comfort zone and you just entertain yourself, you find ways to entertain yourself. But aisi koi cheez rahi hai जो आपके साथ बचपन में हुई हैं दैट यू फील लाइक दैट हैज मेजरली शेप्ड योर पर्सनैलिटी एंड मेड यू हु यू आर. आपको ट्रांसफॉर्म उस एक चीज ने की है, अगर आपके मम्मी पापा ने की हो, और एनीथिंग, इट कुड बी अ प्रैक्टिस, इट कुड बी एनीथिंग दैट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड दैट यू फील लाइक इज अ बिग पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी राइट नाउ. अगर ऐसा कुछ है मुझे बताओ. 800-1062, यू कैन कॉल मी और इवन डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज 106.2 पिक एफएम.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
2: Listen to her every day.
4: Mugambo! Khush hua!
5: Subhash, I want to ask you this question. I came across this research that says that 87% men, jaise hi unki girlfriend banti hai, wo apne doston ko bhool jate hain. To aapne ye kiya hai, jab college ke time pe koi girlfriend bani to doston ko bhool gaye?
6: Mere saath aisa ho gaya hai. Maine actually main nahi choda tha, lekin log mujhe bolne lag gaye the ki main chhod diya. Matlab girlfriend milne se koi friend ko kaise chhod sakta hai?
5: Friend ko time nahi dete hain ladke. Jaise hi girlfriend aati hai, sara time girlfriend ko dete hain. Friends ko time nahi dete hain.
6: Time nahi dena ka matlab to ye nahi hai ki humne chhod diya.
5: तो ये कॉलेज के टाइम की बात है?
6: हाँ, कॉलेज के टाइम की बात है।
5: तो फिर उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ?
6: अरे पूछो मत, मानिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं मैरिड
5: नाउ। ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू नो कि जिसके लिए आपने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी, वो रही कि नहीं रही आपके साथ?
6: अरे नहीं रही ना।
5: इसलिए हमेशा दोस्तों को आगे रखो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं, दोस्ती का कंधा काम आता है रोने के लिए।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: 40 डिग्रीज की गर्मी बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 44%, बट स्टिल प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। ब्राइट एंड सनी डे, लोज जाएंगे आज 33 तक।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz? Yes or no?
2: Sahil, good morning. How are you doing?
3: Very good morning, Sid. How are you?
2: अरे बाप रे,
3: I'm so happy. यार मजा आ गया आपकी आवाज सुन के.
2: अरे मुझे और
3: दिन बन गया.
2: क्या साहिल, थैंक यू सो मच यार, मतलब गदगद हो गया मैं आपकी आवाज सुन के.
3: मेरी जान, मजे ही आ गया सच में.
2: साहिल, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर सो एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग यार? वो क्या
3: यार, यार बड़ी बात,
2: क्या खाते हो प्लीज बताओ यार. अभी तो सिर्फ फोन लगा है,
3: दिन बन गया.
2: अभी तो सिर्फ फोन लगा है, अभी तो नंबर भी लग सकता है. हम लोग खेलने वाले समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट. साहिल, फर्स्ट सॉन्ग इज दिस वन. बताइए.
4: दिल धड़कने दो.
2: साहिल, क्या लगता है आपको, सही है गलत है?
3: बिल्कुल सही बात है, शायद मैं यही लेते हैं, दिल धड़कने दो ही जा रहा है.
2: आंसर सरासर गलत है. ओके गाइस, आई एम गोना गिव यू वन मोर चांस. अगर ये दिल धड़कने दो नहीं है तो कौन सी फिल्म है? बजर पे
3: बिग साहिल.
2: बिग साहिल है?
3: ये धड़कने फिल्म है.
2: हिंदी फिल्म का इतिहास काफी लंबा है, लेकिन इतिहास में धड़कने नाम की कोई फिल्म नहीं आई है भाई. धड़कन थी, धड़कने.
0: एनर्जी एंड एक्शन, मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM, द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: 40 डिग्री सेल्सियस बाहर, वेरी वेरी ब्राइट एंड सनी. ह्यूमिडिटी फिलहाल है 45% पे. हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लोज आज शाम जाएंगे 33 तक. ओवरऑल हॉट एंड ह्यूमिड डे.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me.

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, you're with me, Zohra, on The Big Mix. And filhaal, वक्त हो चुका है खेलने का.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. And to play Name, Place, Movie, Thing with me today on the phone line is Vishal. Hi, Vishal.
3: Hello.
1: कैसे हो? क्या करते हो? क्या कर रहे हो?
3: मैं एक शिपिंग लाइन में हूँ एज अ ऑपरेशन सुपरवाइजर.
1: फिलहाल क्या कर रहे हो? शिपिंग तो नहीं कर रहे, ड्राइव कर रहे हो?
3: नहीं, अभी हांजी कार में ही हूँ.
1: कहाँ जा रहे हो? काम खत्म हो गया आपका? 4:30 भी नहीं बजे तक तो.
3: बस अभी काम से वापस आ रहे हैं अभी.
1: सही है यार, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, मजा ही कुछ और आता है.
3: जी.
1: अच्छा विशाल, बॉलीवुड में क्या लग रहा है आपको? आपके नंबर कितने आने चाहिए अगर बॉलीवुड एक सब्जेक्ट होता? आपको क्या लगता है क्या स्कोर कर सकते हैं आप?
3: स्कोर कितने में से?
1: 100 में से.
3: 100 में से 50 मान सकते
1: हैं. ओनली? तो मतलब आप तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो फिर बॉलीवुड में. चलो यार, देखते हैं इस गेम में आप शाइन कर पाते हो, 80-90 लेके आ पाते हो कि नहीं. नेम, प्लेस, मूवी, थिंग, वेरी सिंपल गेम, ठीक है? चार कैटेगरीज आपको बताऊंगी, आपको मुझे उस एक लेटर से चारों कैटेगरीज के आंसर देना है 5-5 सेकंड के अंदर. कूल?
3: ठीक है,
1: चलो रेडी करते हैं. बिकॉज आपने कहा पहले ही कि आपके सिर्फ 50 आएंगे आउट ऑफ 100, आई स्टार्ट विद अ इजी लेटर फॉर यू. अच्छा, पहले तो पीछे रेडियो बंद कर दो, मुझे खुद की आवाज आ रही है. ठीक है,
3: रेडियो बंद है.
1: हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो पहले मैं आपको लेटर दे रही हूँ, लेटर एच. एच से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. चलो,
3: ऋतिक रोशन.
1: वेरी गुड. एच से बताना है मूवी का नाम.
3: हम आपके हैं कौन?
1: अब बताओ प्लेस.
3: हिमाचल.
1: आप बताओ थिंग. सर पे पहनते इसको. चलो ठीक है, मान लेती हूँ. लास्ट सेकंड के बाद आपने जवाब दिया है, फिर भी चलो. आपने पहले ही कह दिया था कि एवरेज स्टूडेंट हो, वैसे लग तो नहीं रहा एवरेज, फटाफट से आंसर दिए आपने. चलो वी विल प्ले वन मोर राउंड.
3: एक्चुअली मेरा फेवरेट था तो इसलिए जल्दी बता दिया.
1: लकी हो गए कि पहले एच बोल दिया मैंने. ओके चलो, अभी आई विल गिव यू अ लिटिल मोर डिफिकल्ट लेटर. ओके चलो, अभी आपको मुझे बताना है ये सारा कुछ विद द लेटर एल. एल फॉर लव है ना, तो एल से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम.
3: लारा दत्ता.
1: शाबाश. एल से बताओ मूवी.
3: लगान.
1: हाँ वेरी गुड. एल से बताओ प्लेस.
3: लंदन.
1: ये पीछे से कौन बता रहा है आपको? आंसर पता चल गया है, फोन अ फ्रेंड जो है.
3: अभी साथ में बैठे हैं, वो ड्राइव कर रहा है.
1: एल से बताओ थिंग. लॉटरी. कौन? भैया को बोलो, भैया आप ही नहीं खेलो गेम, ठीक है? बकवास आंसर दे रहे हो जो. नहीं नहीं, चलो टाइम खत्म हो गया, भैया ने हरा दिया आपको. बट वेरी वेरी वेल प्लेड. वैसे भैया का नाम क्या है आपके?
3: भैया का नाम रमन बंस.
1: भैया आपसे बड़े फैन है शायद बॉलीवुड के. भैया के शायद 60 तक आ गए थे स्कोर 100 में से.
3: नहीं, वो रेडियो रेडियो मुझसे बहुत ज्यादा सुनता है, बहुत ज्यादा.
1: तो आपको भैया से फोन करवाना चाहिए था. अरे अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. चलो आपने बहुत अच्छा खेला विशाल, इट वॉज लवली लवली टॉकिंग टू यू.
3: थैंक यू,
1: हैव अ ग्रेट डे, बाय
3: बाय.
1: विशाल एंड उनके भैया खेल गए नेम, प्लेस, मूवी, थिंग. इफ यू थिंक यू कैन प्ले इट बेटर देन देम, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल मी 800-1062 पे. आई प्ले दिस गेम एवरी डे इन दिस आवर.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
2: It's hot it up with big tickets.
3: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
2: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
3: Buy now at bigticket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
6: दो या चार?
5: चार।
6: कब तक वापस लौटेगा?
5: यूं ही यहीं। चार पांच दिन में?
6: चार या
5: पांच? पांच।
7: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Heading towards Sharjah, milega heavy traffic aapko on E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Warka 2 ke paas a car accident. Also, bumper to bumper traffic Murda se shuru hota hai, going until S102 Sharjah Ring Road, 20 minute ka delay. Festival City ke paas light traffic, Ribat Street pe aapko mil jayega D83. Ek aur car accident hua hai D68 Al Khail Street par agar aap hai, going towards Latifa Hospital, wahan pe bhi 5 se 6 minute ka delay. Any other updates, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ।

अगर आपने गेस कर लिया ये कौन सा ट्रैक है और आपके अंदर का भी किशोर कुमार बाहर आने के लिए बेकरार है, then this is it, giving you a chance to host your own concert right here on the Big Thrill. 800-1062 is the number to dial. Looking for my karaoke king or queen. And मैं कहती हूँ ना, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. It's just for fun. It's just to de-stress. Just to relax after a long tiring day. So यहाँ पे कोई इंडियन आइडल नहीं हो रहा है. बस दिल लगाने के लिए, दिल बहलाने के लिए विल सिंग. फोन लाइन्स भर चुकी हैं, तो चैट जीपीटी ने सही बोला था, ये गाना सबको आता है. अगर आप भी गाना चाहते हैं, 800-1062 is the number to dial.

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
0: सब आ रहा है। देखिए ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2

0: जाओगे?
1: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi, and every evening, 5 to 6, we do the karaoke. Gaadi mein karte hain concert, traffic jam mein bhi jam, gana ya na aaye, gana chahiye is the motto of life. And dil lagane ke liye aa gaye hain, Shadil. Hi, Shadil.
2: Hi.
1: How are you? Kaisa raha aapka din?
2: बढ़िया रहा मंसी, आपका कैसा है?
1: मेरा भी बहुत अच्छा था सर, आप और बढ़िया बना सकते हैं, मेरी थोड़ी ऑडियंस बढ़ा के अगर आप अच्छा गाएंगे तो और लोग सुनेंगे मुझे, तो मेरे लिए अच्छा है।
2: मैं अच्छा गाता हूँ, कोशिश करूंगा अच्छा और गाऊं।
1: किसी ने आज से पहले आपको बोला कि आप अच्छा गाते हो?
2: हाँ, बहुत बोला है।
1: बहुत
2: वो डिपेंड करता है गाने के ऊपर, गाना पूरा गा पाऊँ ना गा पाऊँ वो पता नहीं।
1: जो अच्छा गाता है सर वो कोई भी गाना अच्छा गाता है, तो उसमें टीएनसी अप्लाई नहीं होता है। बट आपने हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं कि सबने बोला है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो चलिए आज आपका गाना सुनते हैं। इट्स टाइम फॉर द कारियोकी विद शादिल।
0: कारियोकी
1: शादिल, आपका ट्रैक है। रुको, अभी शुरू नहीं हुआ मेरे दिल के चैन, एक सेकंड, अब गाना शुरू होगा। यस,
2: ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
1: गा दो।
2: ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
1: आए हाय, अच्छा गाया है, मतलब इतना भी आपने मेरा चैन यहाँ पे बेचैन नहीं किया, तो अच्छा ही गाया है। नहीं, आपने जितना गाया सर बहुत अच्छा गाया, थोड़ा और आगे गाते तो ऐसा लगता कि आप ही गाओ फिर मैं यहाँ से चली जाती।
2: दूसरा गाना कहे तो मैं गा सकता हूँ।
1: नहीं नहीं सर, ये कोई इंडियन आइडल नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ये आज से पहले गाया है किसी के लिए वो मेरे दिल के चैन?
2: नहीं नहीं गाया।
1: पहली बार गा रहे हो?
2: दूसरा गाया।
1: कौन सा गाया है दूसरा?
2: ओम शांति ओम का, हाँ मैं अगर कहूँ।
1: हाँ, तो फिर उसने कुछ कहा कि वो चली गई? बस शादिल, आपने अच्छा गाया, मतलब इट वॉज नॉट बैड एट ऑल, यू वर ऑलमोस्ट देयर, मतलब आपका 18वां सुर लग गया था। आपको मजा आया कि नहीं आया गाना गा के?
2: नहीं, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ सच कहूँ तो।
1: अपनी परफॉर्मेंस से कोई बात नहीं सर, वैसे भी कोई आपको प्राइज नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बस मैंने बोल दिया अच्छा गा रहे हो तो आप खुश हो जाओ, मैं ही जज हूँ यहाँ पे। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय। यही है कारियोकी, अगर आपको लगता है कि आप भी गा सकते हैं, मतलब अगर आप इनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल।
0: कारियोकी 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल मानसी। यहां हम अच्छा गाना गा रहे हैं विद कैरियोकी। अगर आपको अच्छा खाना खाना है, देन डिस्कवर फोर यूनिक डाइनिंग डेस्टिनेशंस एट ताज जेएलटी। एंजॉय स्टनिंग रूफटॉप सनसेट्स, मेडिटेरेनियन फ्लेवर्स एंड शीक वाइब्स एट पारोस। इफ यू एंजॉय एशियन डेलिकेसीज एंड अ वाइब्रेंट एम्बियंस, देन नोनिया इट इज। All day dining at Shamiana and a lively social scene at TJ's. So make your weekends all the more memorable. They've got the Nisi brunch every Friday at Paro's, retro brunch every Sunday at Nonia, and a popular evening brunch at TJ's. There's something for everyone at the JLT. Definitely go and check them out. Filhal coming up. मधुबंदी बागची की आवाज। फिलहाल आपकी आवाज सुनने के लिए हम तैयार हैं यहाँ पे। वी आर जैमिंग। इट्स टाइम फॉर द कारियोकी। इफ यू वांट टू सिंग, गिव मी अ कॉल 800-1-0-6-2 पे।

0: दिखाया करते हैं कि अपना अच्छा गाती हैं अल्बिना, यू आर अ ब्रिलियंट सिंगर.
1: थैंक यू.
0: You're just being modest here कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ. I'm sure you are the jan of parties. Everyone around you, of course, expects you to sing when you are hanging out with them.
1: Fun fact for you to know, I had my birthday a little while back, like just last month, and my birthday party that I threw was a karaoke party.
0: It
1: was
0: I
1: a dedicatedly Bollywood karaoke party.
0: Love it.
1: And we arranged for like the whole mic and karaoke setup and everything, and we did a full blown Bollywood karaoke party. So,
0: love
1: yeah.
0: it. लग रहा है प्रैक्टिस करके आई है अल्बिना. मैंने भी एक बार अपना बर्थडे karaoke birthday party की थी. एंड मेरी एक फ्रेंड ने माइक ही नहीं छोड़ा, हमें वो जगह छोड़नी पड़ी बिकॉज यू नो द गाय हैड टू कम इनसाइड दैट बूथ. आई एम नॉट इवन किडिंग एंड से प्लीज प्लीज लीव, आई डोंट वांट टू लूज बिजनेस बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सिंगिंग. बट अल्बिना यू आर माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस दिस इवनिंग एंड आई स्टिल वुडंट माइंड दोस परफ्यूम्स. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
1: बाय.
0: This is what we do every single evening. अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं, then I give you the audience, the platform. Just send me a message, karaoke, your name to 0543091062.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi. To start with, an exciting, thrilling staycation aapka intezaar kar rahi hai. And for all details, you can head to our Instagram page, 106.2 Big FM. It is the Big Summer Surprises. This hour, we play this fun game. It's called the 5-second rule. Aapko milte hain 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. पता है, इट साउंड्स वेरी इजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर डायल. ऑल्सो आज शाम की रिसर्च जो कहती है कि विमेन आर मल्टीटास्कर्स. आई अग्री. इन्हें मेकअप करते करते आपने 3 साल पहले इनसे क्या झूठ बोला था या क्या गलती की थी, सडनली याद आ जाएगा. डू यू अग्री और डिसअग्री? द पोल इज ऑल्सो अप ऑन आवर इंस्टा हैंडल, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग राइट नाउ 6:12।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, यह बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। ट्रैफिक का हाल बेहाल। फिलहाल सालिक देने के बावजूद इफ्राज जो है वो फंस गए हैं जद्दाफ में। हाय इफ्राज, गुड इवनिंग
3: मानसी।
2: ये तो बड़ा खराब लग रहा होगा ना, सालिक भी दिया और फिर ट्रैफिक भी मिला।
3: हाँ यार, क्या
2: क्या करते हैं।
3: मैं दूसरे रोड से जाता हूँ। हाँ। आज ट्राई किया मैं इस रोड से जाता हूँ बोल के, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएगी बोल के, लेकिन ये तो सेम ही है।
2: वही ना, कभी कभार लगता है कि चलो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न मिलेंगे, बट कुछ फायदा नहीं हुआ है। करते क्या आप इफ्राज?
3: आई एम अ सेल्समैन।
2: वेरी नाइस, सो व्हाट डू यू सेल?
3: स्विच सॉकेट जो ऑन ऑफ करते हो ना आप घर पे।
2: अच्छा, स्विच सॉकेट, वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हर किसी को जरूरत होती है, ऑन ऑफ खरीदते ही होंगे लोग।
3: फ्री में मार्केटिंग हो रही है।
2: हाँ, देखो कुछ ना कुछ फायदा हो गया ना फोन लगाने का।
3: सो
2: इफ्राज, हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, आपने 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। रेडियो? तीन सलमान खान की मूवीज,
3: दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3।
2: ये देखो, इसलिए सालिक में ट्रैफिक मिला है इस बंदे को। इसलिए मिला है, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3। नहीं, राइट तो है, बट ये क्या है, शॉर्टकट है ये। इसलिए ने सालिक में भी ट्रैफिक मिलता है। तीन रीजंस बताइए कि कोई शादी क्यों करे।
3: गुड वाइफ, गुड बेबी एंड गुड लाइफ।
2: गुड लाइफ, गुड वाइफ, गुड बेबी, आपको मिल गए तीनों? तीनों गुड। यही रहते हैं कि अपनी कंट्री में रहते हैं?
3: They stay with me here.
2: तीन ऐसी चीजें जो बिरयानी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
3: आलू, लौंग, इलायची।
2: हाँ, आपको आलू वाली बिरयानी नहीं अच्छी लगती?
3: मुझे बिरयानी बिरयानी होती है यार, उसमें आलू क्या है
2: बेचारा। आलू तो आलू कहीं भी फिट हो जाता है, चाहे वो मीट के साथ हो, सब्जी के साथ हो, बड़ा क्यूट होता है आलू, एडजस्टिंग है।
3: करेक्ट, वो सबके साथ एक्सेप्टेबल है, बिरयानी समथिंग एल्स, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज।
2: आई लव आलू इन बिरयानी। तीन गाने जिनमें दिल आता है।
3: हम
2: तीन ऐसे झूठ जो आप अपनी बीवी को बोलते हैं टू अवॉइड योर ससुराल।
3: काम है, बिजी हूँ, काम है, बिजी हूँ, नहीं आ सकता।
2: इनमें से कौन सा झूठ वो मांगती है?
3: कोई भी नहीं।
2: हाँ, तो क्या आपको अच्छे नहीं लगते ससुराल वाले अपने? कौन ज्यादा खराब लगता है ससुर के साथ?
3: वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, देयर वेरी गुड। नो, उनके रिलेटिव होते हैं ना जो वो लोग।
2: बट आई हैव टू से, यू प्लेड रियली रियली वेल, बहुत अच्छा खेला आपने।
3: Thank you.
2: आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पे।

0: 106.2, the beat of Bollywood. This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamu alaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
6: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. T&Cs apply.
7: Missed your morning buzz? Yes or no?
8: Sahil, good morning. How are you doing?
9: Very good morning, Sid. How are you?
8: अरे बाप रे,
9: I'm so happy. Yeah, मजा आ गया आपकी आवाज़ सुनके.
8: अरे मुझे और
9: दिन बन गया.
8: क्या साहिल, थैंक यू सो मच यार, मतलब गदगद हो गया मैं आपकी आवाज सुन के.
9: मेरी जान, मजे ही आ गया सच में.
8: साहिल, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर सो एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग यार? वो क्या
9: यार, ये बड़ी बात है,
8: क्या खाते हो प्लीज बताओ यार. अभी तो सिर्फ फोन लगा है,
9: दिन बन गया.
8: अभी तो सिर्फ फोन लगा है, अभी तो नंबर भी लग सकता है. हम लोग खेलने वाले समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट. साहिल, फर्स्ट सॉन्ग इज दिस वन. बताइए.
10: दिल धड़कने दो.
8: साहिल, क्या लगता है आपको, सही है गलत है?
9: बिल्कुल सही बात है, शायद मेरे को यही लगता है, दिल धड़कने दो ही गाना है.
8: आंसर सरासर गलत है. ओके गाइस, आई एम गोना गिव यू वन मोर चांस. अगर ये दिल धड़कने दो नहीं है तो कौन सी फिल्म है? बजर पे
9: बिग साहिल.
8: बिग साहिल है?
9: ये धड़कने फिल्म है.
8: हिंदी फिल्म का इतिहास काफी लंबा है, लेकिन इतिहास में धड़कने नाम की कोई फिल्म नहीं आई है भाई. धड़कन थी, धड़कने.
0: एनर्जी एंड एक्शन, मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM, द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: Still 38 degrees outside. Feels like 45. It's very, very hot. I think this is going to be one statement jo hum agle 2 mahine tak roz bolenge, very hot. Low jayega around 33. Humidity filhal 48% par.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
14: Are you going to go?
15: Yeah.
16: Cut it, yeah.

होमाकुर ऋषि को उसका ड्यू मिलना चाहिए. शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. चाहे आप गैंग्स ऑफ वसाईपुर की बात करो, बदलापुर की बात करो, ओ मोनिका माय डार्लिंग जिसका गाना आपने अभी अभी सुना, ओ बेबी डू डाई डू द मूवी जो वर्ड ऑफ माउथ से अल्फा से आगे निकल गई है. यस, ये हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब ने प्रोड्यूस की है एंड दिस मूवी इज डूइंग रियली रियली वेल इन द थिएटर्स. आई थिंक इस एरा की शबाना आजमी हुमा कुरैशी है. Viral coming up in just a bit and we've got some fantastic music ke saath. When I come back, your chance to win apni puri family ke liye ek staycation, wo bhi all expenses paid staycation hai. Beat the heat in style, you can chill by the pool, enjoy some great khana, property bahut stunning hai. I'm talking about the big summer surprises. Agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do it right away. BSS apna naam likhe bhejna hai 0543091062 pe. In fact, yahan mauka nahi milta hai, randomizer aapka naam nahi dhoond pa raha hai. Instagram is your friend. Go and participate through our Insta handle, which is 106.2 Big FM. We've got Madhubanti Bagchi ki awaaz mein, this one from Stree 2 in Just a bit. Also, when I come back, we're also playing the 5-second rule. मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. Honestly, तमन्ना ने झूठ नहीं बोला था. इस गाने ने कोको मेलन को रिप्लेस कर दिया इंडिया में.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:11।
2: Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill of Mansi and it's time for the big summer surprises. And if you want to win the ultimate family staycation, you have to register BSS. Your name 0543091062 पे WhatsApp करने हैं, just like राहिल और साहिल, मतलब ये तो सीता गीता आ गए आज शाम. Hi राहिल, hi साहिल, आप दोनों बिछड़े हुए भाई तो नहीं है?
2: मैं सरकार नहीं तो मम्मी पापा को ही पूछना पड़ेगा.
1: साहिल आपका WhatsApp स्टेटस तो बड़ा अच्छा है. We have one life and we decide how we live, right?
2: बिल्कुल सही बात है.
1: तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में जो आपके हिसाब से चल रही है?
2: जो मम्मी पापा ने बोला वो कभी नहीं किया.
1: बहुत बढ़िया,
2: बहुत किया,
1: बहुत बढ़िया. अपने बच्चों को जो है आप साहिल से दूर रखें. राहिल, व्हाट डू यू डू?
3: आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम राहिल आप स्टेकेशन पे गए थे?
3: इट्स बीन अ कपल ऑफ इयर्स.
1: Oh, it's been a while. Were you waiting for a free mocha to go for a staycation?
3: Yes, I was waiting for your call.
1: So cute. Sahil, आप तो जाते रहते होंगे?
2: नहीं सरकार, एक्चुअली मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, टाइम ही नहीं मिलता.
1: अरे वेरी नाइस यार, आर्टिस्ट है आप तो. एक भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा जो है वो मूवीज जो है शूट कर रहा है. वेरी वेरी नाइस. ऑलराइट, आई एम गिविंग यू बोथ अ चांस टू वॉक अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस टू पुट योर नेम एंड योर फैमिलीज नेम इन द लकी ड्रॉ फॉर दिस स्टेकेशन. तो बॉलीवुड के गानों की नॉलेज किसकी बेटर है, राहिल की कि साहिल की?
2: मेरे को लगता है राहिल भाई की होगी. तो
1: राहिल भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. राहिल भाई कह रहे हैं कि हो गया मेरा आज का, मैंने सारी बातें ऑफिस में कर ली है.
2: साहिल की नॉलेज तो भाई बॉलीवुड में तो बहुत ही कमजोर है वो.
1: साहिल, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप ना वैसे दोस्त होंगे जिनके पास कभी भी दुखी होके बंदा जाए कि यू नो आज दिन अच्छा नहीं था या किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, आप उस बंदे को खुश कर दोगे. बड़े खुश मिजाज हो आप.
2: 100%
1: लगी रहा है. यू आर द फ्रेंड टू हैव. राहिल, आर यू देयर?
3: Yes.
1: Okay, so chalo, without further ado, because Rahil seems not interested in our conversation, he wants to play the game and he's like, okay, let's call it a day. Very, very simple. मैं यहाँ आपको गाने सुनाने वाली हूँ. आपने गाना guess करना है. ये गाने holiday से, beach से, vacation से related हैं. But जवाब देने के लिए पहले आप बोलेंगे Big Sahil, Big Rahil, and I will ask you to answer. अगर आपने ऐसा नहीं किया, directly जवाब दे दिया, तो आप disqualify हो जाएंगे. ठीक है?
2: Done. सरकार.
1: All right, all the very best, guys. It's time for the big summer surprises.
0: Participate in summer song contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: चलो जी, आपका पहला गाना है. राहिल साहिल, जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, शिल्पा शेट्टी, समुंदर से निकलती हुई.
3: बिग राहिल, इज दिस शट अप एंड बाउंस?
1: इट इज शट अप एंड बाउंस आफ्टर सो मेनी हिंट्स. थैंकफुली 1 point.
2: ये तो बिल्कुल ही बड़ा आसान है, दिमाग ही निकल गया.
1: पता था आपको ये गाना, मैंने इतने सारे हिंट्स दिए. समुंदर से शिल्पा शेट्टी जल परी की तरह बाहर आ रही है. चलो 1 point टू राहिल. नाउ लेट मी प्ले यू द नेक्स्ट सॉन्ग. गोवा, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, दोनों की ही बॉलीवुड नॉलेज जीरो है.
2: मेरा तो भाई दिमाग ही एकदम सुन हो गया मैं तो. ये तो
1: कोई बात नहीं, उनका भी कुछ खास चल नहीं रहा है. इट इज नॉट. हो गया टाइम खलास. ये वक्त वक्त वक्त भी गलत है. जीने के है 4 दिन वो था. चलो अब दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग वन. ओके अमीशा पटेल, ऋतिक रोशन. ऋतिक का डेब्यू. हाँ जी,
2: कौन आ प्यार है?
1: बिल्कुल सही, 1-1 हो गया है. मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे टाई हो, बट टाई हो गया है. तो चलो अब ये टाई ब्रेकर गाना सुन लीजिए. उर्मिला मातोंडकर, जैकी श्रॉफ, मुंबई का बीच.
3: बिग राहिल.
1: हाँ राहिल.
3: इट इज तन्हा
1: तन्हा यहाँ पे जीना. आई एम सो ग्लैड यू आंसर्ड. फाइनली
2: कांग्रेचुलेशंस.
1: कंग्रेचुलेशंस, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सारी रात इसी में निकल जाएगी राहिल साहिल के चक्कर में, दोनों की बॉलीवुड नॉलेज बहुत ही खराब है।
3: अब तो लगता है हम भाई हैं, पक्का
1: भाई हैं, पर किसी से पूछ के नहीं, मैं कह रही हूँ किसी से पूछ के एटलीस्ट राहिल ने टू द क्लाइमैक्स इस गेम को खेल लिया। बट कंग्रेचुलेशंस राहिल, आपको मिलते हैं ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस योर नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ फॉर द बिग समर सरप्राइजेस। साहिल, यू कैन स्टिल ट्राई एंड थोड़ा सा जस्ट ब्रश अप योर बॉलीवुड स्किल्स। ओके,
2: 100%।
1: थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस।
2: यू टू,
1: बाय।
0: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: जैसा आपने अभी भी सुना, बहुत ही मेहनत के बाद फाइनली राहिल गॉट दिस चांस एंड ही इज शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस अल्टीमेट फैमिली स्टेकेशन. इनफैक्ट यू कुड बी नेक्स्ट. अगर आप जाना चाहते हैं इस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिक्सोस अल मरीदन रासल खेमा विद योर एंटायर फैमिली, देन दिस स्टेकेशन कुड बी योर्स जस्ट बाय रजिस्टरिंग. अगर आप चाहते हैं ड्रॉ में आपका नाम भी जाए, रजिस्टर करो BSS, your name, to 0543091062. The Big Summer Surprises has been made possible by our presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almarid and Russell Khema. Do not forget, kal bhi, once again, I'll be playing this game at the same time and you could be next. Aapko mauka milega shortlist hone ka in the lucky draw and also a chance to win open movie tickets and F&B vouchers. Until then, keep sending us those WhatsApps. Agar yahan number nahi lagta, you can head to our Instagram page. Wahan se direct entry milegi for the Big Summer Surprises. Our Insta handle is 106.2 Big FM.
0: Big 106.2. Yeah!

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.

0: ऑफ बॉलीवुड।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 50% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: One more bahana to love this country that we call home, that is the UAE.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: UAE ने इंट्रोड्यूस करा है द 5-year मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा. यस सर, ट्रैवल टू द UAE नाउ विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. UAE का 5-year मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा इज ओपन टू ऑल नेशनलिटीज, रिक्वायर्स नो लोकल स्पॉन्सर एंड इज परफेक्ट फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, बिजनेस विजिटर्स एंड ऑफ कोर्स दोज विद फैमिली हियर इन द UAE. वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. यू कैन स्टे अप टू 90 days पर विजिट एंड एलिजिबल फॉर अ 90-day एक्सटेंशन एज वेल, सब्जेक्ट टू अप्रूवल. Maximum stay of 180 days in a calendar year. And I think this is brilliant news. All you need is a valid passport, jiska 6-month validity ho. 6-month bank statement showing a minimum balance of around $4,000. Confirmed return flight ticket and a valid UAE health insurance with a recent passport size picture. That's it. If you want to apply, you can apply online through the GDRFA Smart Services platform or the ICP portal. And estimated application and issuance fees is around 3,713.50 dirhams. Final cost jo hai wo depend karti hai on individual circumstances, but great news for people like me jinki families jo hai wo frequently aati hain, aapki bhi hongi, so I think this is the perfect option. Like I said, one more reason to love this beautiful country that we call home.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इतनी अंडररेटेड है ना ये एल्बम. इट इज ब्यूटीफुल, चाहे वो कायदे से हो, जमाना लगे, और कितनी मोहब्बत, दिल का क्या. इनफैक्ट द मूवी इज ऑल्सो वेरी वेरी अंडररेटेड. अ लॉट ऑफ पीपल आई नो डिड नॉट लाइक द मूवी, बट आई काइंड ऑफ लव द मूवी एंड आई हैव रीवॉच दिस मूवी लाइक 3 times एंड ऑल थैंक्स टू नीना जी. आई एम अ बिग बिग बिग फैन ऑफ नीना गुप्ता एंड पंकज त्रिपाठी.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: But all time for me now to say goodbye, good night. I will now see you tomorrow. We'll bring in the weekend together. Until then, do not forget to register because ye aakhri hafta hai for the big summer surprises. Agar aap puri family ke saath staycation pe jana chahte hain, then fatafat register karna hai. Uske liye WhatsApp karna zaruri hai. 0543091062 हमारा WhatsApp नंबर है. BSS अपना नाम लिख के भेजना है. यू कैन ऑल्सो हेड टू आर Instagram पेज, वहां से डायरेक्ट एंट्री आपको मिलेगी. सो 106.2 Big FM इट इज. यू कैन से हेलो टू मी. आई एम Mansi टॉकिंग एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो. यू टेक केयर ऑफ yourself एंड अपना एक सम वेरी अनप्लग्ड वेरी चिल काइंड ऑफ म्यूजिक विद द बिग चिल एंड आई विल सी यू टुमारो. विल ब्रिंग इन द वीकेंड टुगेदर. गुड नाइट.

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौट आएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM, only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247. Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: crush. No noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा रिसर्च भी मेरा बट प्लान होगा आपका फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया
0: Catch The Big Recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.